कह गए गंगा राम हो मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम, हम तेरे हैं गुलाम, हम तेरे हैं गुलाम।

मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम।

0: Like a gold.
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में. भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले. इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी. रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. जय श्री जगन्नाथ. Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Like a Gold par.

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
1: फिर
0: फुर, फुर, फुर, फुर, फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
2: कह दो
0: कह दो कह दो कह दो।

0: राई रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले र...

0: ये गुरम।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy,

0: your global flow. T's and C's apply.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई बढ़ सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन

0: भव सागर से वो तर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरु जी, ठीक है।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा से संजोग विखान, जिने लिखे ते सिर नाहे।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ ना।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एकावार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: Imagine clubbing hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of bhajan jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Lyco Radio Network.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: She can't hear you, but danger always hears her coming.
6: Sab dar bhag jaye.
5: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
2: Gold breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel Auto Protected।
4: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
5: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथहॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
4: सच?
5: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
6: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। Nirwala, Taste of India, now in Ilford.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344।
4: लंदन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फॉर अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UV24AX। वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई। sonatours.co.uk 14 डेज कनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027। Book before the end of July and get $600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
6: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better. This is Leica Gold.

0: good morning. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के गोल्डन गीतों का खजाना लुटाया जा रहा है और आपको आपको बुलाया जा रहा है, आइए और लूटिए। शुक्रवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 17 तारीख। हर रोज भाई कैलेंडर आगे बढ़ता है, दिन गुजरता है, आज कुछ यहाँ बदला सा है। कुछ रौनक सी है, कुछ चर्चे हैं, कुछ खर्चे हैं। भाई माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और भाई सबसे पहले शुरुआत करने से पहले धन्यवाद करें इस लड़की का। अरे सुन दीजा, वो तो निकल गई।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Feel good classics all day. Leica Gold.
0: और मैं क्या जी, ये तो कोई गलती हुई है? स्टूडियो मेरे हवाले करके कुड़ी पच गई। अब गाड़ते सुन जा।
4: ओए चन जी, जरा मुड़ के तो देख।

0: send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: वेरी गुड मॉर्निंग भाई, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बैक टू बैक संगीत से दो गीत हमने परोसे और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को पसंद है, पर आपके मैसेजेस कुछ ज्यादा ही आए भाई। विषय कुछ अलग से है, गीतों की प्रशंसा में नहीं, दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ। तो साहब, सर आंखों पर आपका प्यार, आपका उद्गार, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बता दें आपको पाउंड का रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके वाले कह रहे हैं भाई रेट अच्छा चल रहा है सचमुच। इफ यू वांट टू सेंड मनी टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन इंडिया टुडे दे आर गिविंग 129.25 रुपीस फॉर वन पाउंड, 129 रुपए 25 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन सेंड वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग बाय

0: and for other legal requirements.
1: और फुटबॉल का भाई स्कोर ये अपडेट ये है कि इंतजार है, हाँ बिल्कुल सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस बाकी है, खेल अभी बाकी है, उनसे मेल अभी बाकी है फ्रांस से। देखिए साहब, बात यह है कि हार जीत तो खेल में चलती है, लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि कम से कम तीसरा स्थान तो हम पा ही लेंगे, और भाई 1-2-3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आ जाए तो हम कहेंगे कि हम विनर हैं। लेकिन फ्रांस की टीम भी तगड़ी है और वो भी चोट खाई हुई है, हार के आई हुई है, तो फ्रांस वर्सेज इंग्लैंड विल बी टुमारो फॉर थर्ड प्लेस एंड द मैच विल स्टार्ट एट 10 o'clock इन द नाइट। यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, खेल गजब का होता है भाई, हार जीत तो होती रहती है। फाइनल मत भूलिएगा संडे 19 जुलाई को, उसका भी मजा लेंगे, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। ऑल द बेस्ट फुटबॉल, क्रिकेट का जिक्र नहीं करेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: And don't forget भाई रैक लो, आर ए के लॉ को अगर आप कॉन्टेक्ट करें तो भाई 15 मिनट्स की जो लीगल एडवाइस है वो आपको फ्री देंगे। यस, कानूनी मशवरा बिल्कुल मुफ्त देंगे अगर आप लाइक मेंशन करेंगे।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड।

आइए सैर पर चलते हैं, देश से बाहर निकलते हैं। अरे बहन भाइयों, कभी गांव से बाहर निकलने का नहीं सोचा था, फिर निकले तो शहर पहुंचे, शहर से निकले तो दूसरे राज्यों के भाई लोग देखे, कल्चर देखी, खान पान देखा, और ये तो सोचा ही नहीं था कि कभी विदेश यात्रा भी करेंगे। और उसके बाद भाई सच यकीन मानिए, दुनिया घूमे बिल्कुल राज कपूर की तरह बिना खर्चा किए, $8 में विश्व भ्रमण का मौका।

0: दुनिया की सैर कर रहा भाई, ये वो जमाना था मेरे जैसे लोगों के लिए कि भाई हम सिनेमा हॉल में बैठ के ही बाहर के शहर देखा करते थे, बाहर की दुनिया से मिला करते थे और लोगों से, उनकी संस्कृति से जान पहचान बढ़ाते थे। लेकिन अब तो भाई नेचुरली के दुनिया बहुत छोटी हो गई है, पर ऐसे में राज कपूर साहब ने ये फिल्म बनाई थी दुनिया घुमाने के लिए। इससे पहले भी बाहर के दृश्य फिल्माने के लिए लव इन टोक्यो, लव इन शिमला, लंबू इन हांगकांग, मतलब घर बैठे एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, तो इस तरह से भाई ये घुमाते थे, विदेश दिखाते थे। और अब तो हर व्यक्ति, आम घरों से भी बच्चे, कोई पढ़ने के लिए, कोई लड़ने के लिए नहीं कोई भाई कमाने के लिए, कोई अपना पांव जमाने के लिए तो बाहर निकलते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि दुनिया छोटी हो रही है, एक दूसरे के बारे में जानकारियां बढ़ रही हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और उम्मीद है कि इसी तरह से एक मार्ग युद्धों को रोकने का भी खुलेगा। राइट नाउ भाई 10:30 बज गए हैं, खबरों का वक्त हो गया है। और यहाँ अपनी ब्रिटेन की राजनीति में तो बता दें कि प्रधानमंत्री स्टार्मर जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं कि पूरे स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट से निकलूंगा। और भाई देखिए नए प्रधानमंत्री की तैयारियां हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या वो करने जा रहे हैं, कहते हैं अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो अलग तरह का उनका वो रह गया। पूर्व मेयर हैं मैनचेस्टर के, अनुभवी हैं, और अब देखते हैं भाई सत्ता संभालने के बाद मंडे को शायद जो है वो प्रवेश करेंगे, पर जब भी करेंगे वो दृश्य वह हम भी रेडियो से बखान करेंगे और स्वागत करेंगे नए प्रधानमंत्री का। पर उससे पहले और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट द न्यूज़ इज नेक्स्ट ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क। पर पहले ये बता दें कि ये गीत कौन पहुंचा रहे थे आप तक, ये दुनिया की सैर कौन करवा रहे थे।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
0: Like a radio network. Ab aap रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। फिल्मी दुनिया से एक समाचार आया, आमिर खान ने कहा कि सोनम वांगचुक पर नहीं बनी थी 3 Idiots फिल्म। ये सोनम वांगचुक जो हैं ये सचमुच बहुत चर्चित हैं, बताएंगे क्यों। अमेरिका ने कहा है कि चीन ने गैर कानूनी तरीके से हमारे 22 करोड़ वोटर्स की जानकारी हासिल की थी। नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम के रिजल्ट जारी हो गए हैं। भाई ये नीट यूजी जो है ना, इसमें ये बड़ी कठिन परीक्षा होती है, पास करके जो है विद्यार्थी स्टूडेंट्स या जो भागीदार होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो 11.21 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, टॉप किया है। 2 लड़कों ने, एक पंजाब से, एक हरियाणा से और एक गुप्ता और एक बंसल, क्या कहने भाई, बधाइयाँ शुभकामनाएँ। और साहब फुटबॉल की बात करते करते हम क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंच गए। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है, अब सीरीज बराबरी पर टिकी है। अगला मैच निर्णायक होगा जो संडे को खेला जाएगा लॉर्ड्स के मैदान में, और स्कोर के आंकड़ों से हम आपको परिचित रखेंगे। अन्य समाचार, भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर जापान के फॉर्मर कानून मंत्री हिदेकी माकिहारा ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। हिदेकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत में शिमकासेन प्रोजेक्ट यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, कहते हैं कि वो उससे मैं खुद भी जुड़ा हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल मीटिंग्स और बातचीत के दौरान जो बात सबसे ज़्यादा खटकी वो थी भारतीय पक्ष की ओर से बार बार दिखाई गई घोर लापरवाही। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा कभी नहीं निभाते, अगर वे कोई वादा करते भी हैं तो तुरंत उससे मुखर जाते हैं, वे आखिर तक बस अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहते हैं। भाई सभी ऐसा करते वैसे तो, लेकिन वो कहते हैं कि यकीनन भारत के पक्ष की ओर से देर हुई है, हमारी तरफ से कोई देर नहीं है, हम तैयार हैं। जापानी मंत्री का बयान था। रोहित शर्मा क्रिकेटर इंटरनेशनल कैरियर को लेकर भाई उनके बारे में जो अटकलें चल रही हैं उसके बारे में पता चला है कि इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाला जो मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान में हो रहा है ये उनका आखिरी वनडे टेस्ट हो सकता है। बाकी अन्य विधाओं से तो भाई वो पहले ही अलग हो चुके हैं, पर पता चला है कि लॉर्ड्स में जो क्रिकेट का वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा वो रोहित शर्मा के लिए आखिरी मैच हो सकता है, अटकलें हैं। अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। कल शाम से लेकर आज सुबह तक ईरान में अमेरिकी अटैक्स जारी रहे। ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इन हमलों का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप बहुत जल्द इन कार्रवाइयों के नतीजे देखेंगे, और उन्होंने दावा किया कि ईरान के खिलाफ बड़ी जीत वो हासिल कर रहे हैं। लंदन के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आमिर खान ने कहा है कि फिल्म थ्री इडियट्स में उनका किरदार रेंचो जो था वो सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर के चिंता जताई है। सोनम वांगचुक भाई आपको बता दें कि हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर है, कुछ नहीं खा रहे हैं, और ये चिंता का विषय है राजनीतिज्ञों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी और उनके प्रशंसकों के लिए भी। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक पैसेंजर ट्रेन से एक स्कूल की वैन टकरा गई। आज सुबह वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में करना सुवर्णा स्टेशन के पास इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में वैन में सवार 2 स्कूली बच्चे और साइकिल चला रहा एक बुजुर्ग भी चपेट में आ गया। एनवायरमेंट को लेकर के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे यानी भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 20वें दिन लोगों को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से भले ही कमजोर हूं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अंदर बाहर दोनों तरफ से स्ट्रांग रहेंगे। ये मजबूती 20 जुलाई तक तो रहनी ही चाहिए जब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक मार्च निकालेंगे। अब ऐसी हालत में भाई भूख हड़ताल रखे हुए बहुत कमजोर हो गए हैं वांगचुक, कहते हैं कि हमने 20 जुलाई को संसद तक पार्लियामेंट तक वॉक करना है। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और अगर आप लोग नहीं आए और 20 जुलाई कामयाब नहीं हुआ तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। क्यों? यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की के डिफेंस मिनिस्टर मिखाइलो फेडोरोव को बदलने के अचानक लिए गए फैसले से सिविल सोसाइटी में भारी नाराजगी और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में उनका विरोध जो है महसूस किया गया है। कल सुबह राजधानी कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों में ज्यादातर नौजवान लड़के जमा हुए। उन्होंने फेडोरेव से दूर रहो और जीत में बाधा डालना बंद करो इस तरह के नारे लगाए और शर्म करो शर्म करोगे लिखे हुए पोस्टर उठाए हुए थे। भारत में नीट यूजी 2026 री एग्जाम के रिजल्ट जारी हो गए हैं। लड़कियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट यूजी री एग्जाम के रिजल्ट जारी किए। इसके मुताबिक पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने संयुक्त रूप से इस परीक्षा में टॉप किया है। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 4 विकेट से हरा दिया है। अब दोनों तरफ भाई एक एक जीत दर्ज हो गई है यानी मामला बराबरी पर है। आखिरी वनडे इंटरनेशनल संडे को लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा जो एक निर्णायक मैच होगा। अमेरिकी फौज ने बताया कि उसने लगातार 6ठी रात ईरान पर अटैक किए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल को लेकर के दोनों देशों के बीच संघर्ष बना हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी बताया कि अमेरिकी मिसाइल्स हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित केशम आइलैंड के करीब गिरी हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट वाली जगह पर बंदर अब्बास और बुशहर में भी अटैक हुए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है Laika Gold Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
5: Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
6: No!
5: Samba?
6: No! No!
5: Rumba?
6: No!
5: Samba?
6: No!
5: Tequila?
6: No!

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food Branches.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: प्यार करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार करते हैं.

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप लाइका गोल्ड के कार्यक्रम सुन रहे हैं। दिस इज मनोरंजन विद रवि शर्मा, दैट्स माय नेम। और भाइयों, प्रोग्राम के दूसरे दौर में हम चिंतन से आपका स्वागत करते हैं। आज का विचार सुनवा रहे हैं। आज का विचार, आज है खास त्योहार, क्या है बताइए? अरे साहब, वो त्योहार नहीं है जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस मुझे आधी रात से मिल रहे हैं, मेरे मोबाइल पर भी और यहाँ हमारे स्क्रीन पर भी। भाई सर, आंखों पर आपका प्यार और आपका सत्कार, लेकिन आज जो है त्योहार कौन सा है? वेल, लंदन में उसकी झलक आप देखते हैं, लेकिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे रथ यात्रा कहा जाता है। अब कहेंगे भाई, आपको बता दूं कि वैसे यहाँ पर काफी कार्यक्रम जो वीकेंड पर होते हैं आयोजित, एक्चुअल तिथि आज है रथ यात्रा की, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि भाई यहाँ लंदन में रथ यात्रा निकल रही है और हम उसमें शामिल हो रहे हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग द एनुअल रथ यात्रा ऑन संडे 19 जुलाई, स्टार्टिंग फ्रॉम SKSST कैंटन हेरो टेम्पल एंड एंडिंग एट श्री स्वामी नारायण मंदिर स्टैनमोर। डिवोटीज विल हैव द चांस ऑफ पुलिंग लॉर्ड जगन्नाथ जी चैरियट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हेरो एंड ब्रेंट। तो साहब, वहाँ से जो है वो लाइव झलकियाँ देख करके हम आप तक पहुँचाएंगे रेडियो के माध्यम से, और भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उसे, वही जो सजावट उसकी, वहाँ की चहल पहल, वहाँ का सात्विक वातावरण, वो सब हम आप तक पहुँचाएंगे। और वहाँ पर रहेंगे मेरे साथ सरिता सबरवाल, अश्विनी लाइका गोल्ड से, और शर्मा जी खुद भी होंगे। तो भाई वो बड़ा क्या कहें कि आनंदमय उत्सव जो है हम रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कई लोग जानना चाहेंगे क्या है ये रथ यात्रा, क्यों है ये रथ यात्रा? भाई बड़े बड़े रथ जिन्हें लोग खुद खींच करके लेके जाते हैं, तो बता दें इसका इतिहास बड़ा गौरवमय है। रथ यात्रा के लिए जो जानकारी हम आज साझा कर रहे हैं आपके साथ, हमें नॉरवुड ग्रीन से श्रीमती सरस्वती शर्मा जी ने भिजवाई है। थैंक यू वेरी मच आंटी जी। और भाई, और भी बहुत सारे लोगों के संदेश जुड़ गए हैं आके, रथ यात्रा की तरफ भी ध्यान दिलाया कुछ ने। लेकिन साहब, आज किसी का जन्मदिन भी है। किसका है? जरीना वहाब का। उन्हें भी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। जरीना वहाब एक अभिनेत्री रही हैं, कई कामयाब फिल्में उन्होंने दी, जिक्र करेंगे आगे चल के हमारे देशराज बैसन साहब बता रहे हैं। रथ यात्रा की ओर वापस आइए। हमारे भाई रथ यात्रा के इतिहास में बता दें कि ये एक प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र के साथ बहन सुभद्रा, भाई इनकी ये वार्षिक यात्रा का त्योहार है। सालाना सैर यात्रा दौरा, और इसका जो मेन आयोजन है वो जगन्नाथ टेम्पल से नीचा टेम्पल तक होता है। ये उड़ीसा में है, पुरी में। मान्यता है कि साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की होती है। भगवान वहां 7 दिन निवास करते हैं और फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से श्री मंदिर वापस लौटते हैं। अब इस उत्सव की एक विशेष परंपरा है छेरा पहाड़ा, जिसमें गजपति महाराजा ऑफ पुरी, पुरी के जो राजा हैं, वो सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। राजा झाड़ू लेकर सफाई करे तो ये एक संदेश है। भाई आपको बता दूं कि तीज त्योहारों में बहुत सारी चीजें सांकेतिक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, उनके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं भाई हमारे तीज त्योहार, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी परंपराएं। 3 रथ होते हैं यहाँ लंदन में भी, आप देखते होंगे यहाँ यूरोप में कई शहरों में रथ यात्रा निकलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि 19 तारीख संडे को निकल रही है SKSST
कैंटन से शुरू होगी और स्टैनमोर टेम्पल तक, स्वामीनारायण मंदिर तक जाएगी यात्रा। तो आप देखेंगे कि उसमें तीन बड़े बड़े रथ हवा से बातें करते हुए ऊंचाई तक अपनी उसकी चोटी को लहराते हुए, आपको बता दें कि भाई पहला जो जगन्नाथ भगवान का रथ उसका नाम है नंदी घोष, भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज और माता सुभद्रा का रथ कहलाता है दर्प दलन, देव दलन। अब भाई शब्द से तो ऐसा लगता है कि किसी का घमंड तोड़ने वाला वो दर्प का मतलब है अहंकार का खत्म करने वाला वो रथ है। तो इनके पीछे कहानियां ढूंढ के अभी आपके साथ साझा करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा आज शुक्रवार 17 जुलाई को मनाई जा रही है दुनिया भर में। और जो लोग भाई काम के कारण आज नहीं मना रहे तो वो वीकेंड पे मनाते हैं। ये पर्व, ये त्योहार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन होता है, दूसरी तिथि के दिन जो आज है। और बहुधा यात्रा यानी वापसी की यात्रा जो है वो इस साल 25 जुलाई शनिवार को होगी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। और नीलाद्री विजय मंदिर में फिर से एंट्री जो है वो 27 जुलाई सोमवार को होगी। अब इसके पीछे जो स्पिरिचुअल मैसेज है, जो आध्यात्मिक संदेश है, वो है कि रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये संदेश देता है ये त्योहार कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। ये प्रेम, समानता, सेवा और भक्ति का त्योहार है। और छेरा पहाड़ा जो इसके साथ जुड़ा है वो है गजपति महाराजा ऑफ पुरी, जब तीनों रथों के पास आते हैं और सोने के हैंडल वाली झाड़ू से रथों के मंच को बुहारते हैं, सफाई करते हैं। इसके बाद वो चंदन मिश्रित जल और जो खुशबूदार पदार्थ होते हैं, सुगंधित द्रव्य, तो उनका छिड़काव करते हैं। ये हर बरस होता है। अब जरा सोचिए, विनम्रता का प्रतीक है, सिंबोलिक अर्थ समझ लीजिएगा। राजा भी भगवान के सामने सेवक बनकर, नौकर बनकर आता है, यानी हर व्यक्ति समान है भगवान के सामने, समानता का संदेश। सेवा भाव, सच्चा नेतृत्व सेवा और विनम्रता से होता है, सत्ता से नहीं, अधिकार से नहीं। इस परंपरा के कारण जगन्नाथ संस्कृति में यह भावना प्रबल होती कि भगवान जगन्नाथ के सामने सब समान है। और भाई इस अनुष्ठान के पूरा होने के बाद भक्तों द्वारा रथों को खींचने की शुरुआत होती है, यानी जब सफाई हो जाए। इससे यह भी साबित हो गया कि राजा हो या प्रजा, आम आदमी समान है भगवान के सामने। झाड़ू लगाकर सफाई करने की जो परंपरा है वो ये संदेश देती है कि भगवान वहीं जाते हैं, वहीं निवास करते हैं जहां पवित्रता है, स्वच्छता है, साफ सफाई है। छेरा का मतलब ही झाड़ू लगाना है। और पहाड़ा का मतलब छेरा पहाड़ा, यानी अनुष्ठान या सेवा। सेवा का बहुत बड़ा महत्व है मंदिरों में, खासकर गुरुद्वारों में। आप जाके देखें सेवा क्या होती है, आपको देखने को मिलेगी। श्रद्धा पूर्वक भगवान के रथ की सफाई करने का पवित्र अनुष्ठान, फिर रथ को खींचने की ये ट्रेडिशन, और भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक राजा, राजा नहीं कहलाता, सेवक कहलाता है, दास प्रभु का। तो अहंकार की समाप्ति, घमंड का परित्याग करके, सेवक बनकर झाड़ू लगा के राजा ये साबित करता है कि भगवान उसी से प्रेम करते हैं, उसी के पास जाते, स्वयं जाते हैं। देखिए लोग मंदिरों में जाते हैं, उस दिन मंदिर से निकल के भगवान रथ यात्रा में के माध्यम से आम लोगों के बीच से गुजरते हैं। राजा कहता है मैं राजा नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं। इसके बारे में एक घटना, एक कहानी भी लिख भेजी है श्रीमती सरस्वती शर्मा ने। कहते हैं कि उनको झाड़ू लगाते देख करके एक दूसरे राजा ने कहा, यह तो बहुत छोटा काम कर रहा है, झाड़ू लगाना राजा का काम थोड़ा ही है। उसने पूरी के राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करना था, वो शादी तोड़ दी, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब पूरी के सम्राट ने कहा कि मैं सेवक हूं भगवान का, हर व्यक्ति को होना चाहिए, मैं आदि सेवक यानी पहला सेवक हूं,
तब उस राजा ने अपना विचार बदला, परिस्थितियां बदली। उस राजा को भूल का एहसास हुआ जिसने रिश्ता तोड़ दिया था। इस घटना के बाद यह संदेश दूर दूर तक फैल गया कि सच्चा राजा वही है जो सेवा को अपना धर्म मानता है, जो अहंकार का त्याग करता है, जो ईश्वर के समक्ष सेवक बन के जाता है, मालिक बन के नहीं। तो बहनों भाइयों, रथ यात्रा से बहुत सारे संदेश मिलते हैं। और फिर याद दिला दूं कि भगवान कहते हैं, जब सब मेरे भक्त मेरे द्वार पर आते हैं तो मैं उस मंदिर से, उस दिव्य स्थान से निकलकर भक्तों के पास जाता हूं। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। ये भगवान का संदेश है कि अगर एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हो तो मैं 60 कदम चलकर आपकी तरफ आता हूं। जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं पग 60। अगर तुम हो कीले काट के तो मैं लोहे की लाठ। अब तुम ही मेरी तरफ से अगर उन्मुख नहीं होगे तो मैं भी आपकी ओर नहीं आऊंगा, बता दूं। तो उस रथ में सवार होकर भगवान निकलते हैं और भक्त खींचते हैं रथ को। भाई ये अवसर, ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा 19 जुलाई को कैंटन में, और वहां से रास्तों से गुजरते हुए हैरो टेम्पल में पहुंचेंगे, श्री स्वामी नारायण मंदिर स्टैनमोर में। कैंटन हैरो से निकलेंगे और स्टैनमोर में पहुंचेंगे स्वामी नारायण मंदिर।

बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ जी की निकलेगी सवारी। भाई आज ये दिन है, लेकिन यहाँ कैंटन में सेलिब्रेट हो रहा है ये पर्व, ये त्योहार। 19 तारीख को पहुंचिएगा वहां, हम भी पहुंचेंगे। नॉर्वुड ग्रीन से श्रीमती सरस्वती शर्मा जी का भेजा आलेख आज के चिंतन में हमने शामिल किया। और भाई संदेश के अहंकार का त्याग ही सच्ची महानता है। अहंकार यानी राजा सिंहासन त्याग करके झाड़ू लगाता है भगवान जगन्नाथ के रथ को साफ करने के लिए। लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं इस पर्व में, आप भी पहुंचेगा। भारतीय कल्चर में विनम्रता, पोलाइटनेस, सेवा और समानता का जीवंत संदेश है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और आपको बता दूं भाई, सांकेतिक या सिंबोलिक भाषा में वत्सला जी लिखती है, देह हमारा रथ है, ज्ञान रूप बलभद्र जी, भक्ति रूप सुभद्रा जी, और उसमें जो आत्मा निवास करती है ना हमारे शरीर में, दैट आत्मस्वरूप भगवान जगन्नाथ सदा विराजमान है। हम दास इनके ये सब भाई हमारे जैसी जस करण जी, आपने बहुत प्यारा और बहुत न्यारा कार्ड बना के भेजा है। ठीक है भाई, आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमारी सरस्वती आंटी जी ने भी भेजा है। कितने लोगों ने भाई ये संदेश भेजे, अब एक एक का धन्यवाद दिल से करता हूँ, गहराई से वो भाव निकलते हैं, मुझे पूरा विश्वास आप तक पहुँचते हैं। बलभद्र जी और सुभद्रा जी निकली। ठीक है भाई, मान लेता हूँ आज मेरा जन्मदिन है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू मी, लेकिन कोई संस्कृत में कहे तो कैसा लगे, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, तब आपका जन्मदिन जो है अच्छा दिन गुजरे, सुदिनम या सुदिवसम, जन्मदिन तब आपका जन्मदिन भक्त मंगलम जन्मदिनम, आपका जन्मदिन का जो है वो मंगलकारी हो। चिरम जीवम कुरु पुण्यवर्धनम, आप देर तक जिए और पुण्यों की बढ़ोतरी करें, आपका पुण्य बढ़े। चिरम जीवम कुरु कीर्ति वर्धनम, और देर तक जीते आप अपनी कीर्ति में वृद्धि करें, आपकी बड़ाई आपका यश पहले, और सुदिनम पुनः पुनरावर्तम वर्तताम, क्या आपका ये शुभ दिन बार बार आए, पुनर वर्तताम। थैंक यू, नाइस मैसेज इन संस्कृत।

सत्यव्रत शर्मा भाई साहब भिजवा रहे हैं आशीर्वाद वुल्वरहैम्पटन से। करसन पिंडोरी, अमृदु, अर्जुन, पम्मी, पुष्पा चौहान।

0: पटेल, विजय मॉरिशस वाले, महेंद्र क्रोइडन वाले, रागिनी निर्मला जी, थैंक यू वेरी मच। नीला चौधरी जी कहते हैं सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा लगा चिंतन, थैंक यू नीला जी। रानी स्लो वाली, और आप कौन हैं? एस काजमी साहब, या साहिबा, थैंक यू। रमा व्यास जी, थैंक यू वेरी मच। अंजलि जी, आपका संदेश मिल गया, अंजलि सिंह। जैस्मीन, अविनाश पटेल, थैंक यू वेरी मच अविनाश जी। बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें और बड़ी अच्छी चित्रकारी करके भाई भिजवा रहे हैं आप, आपका भेजा हुआ कार्ड बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच हैंडसम हूँ क्योंकि जिस तरह की तस्वीर बना के आप भेजते हैं। और जसकरण, थैंक यू वेरी मच भाई, ब्यूटीफुल कार्ड। हंसा वोरा जी, देशराज जी, अनिल सोनी वियाना में कहते हैं मजे आ गए शर्मा जी, थैंक यू सर। पूजा आइजलवर्थ में भिजवा रही हैं संदेश। डॉक्टर अशोक पटेल, सोनाई सफियो, हेना जी, आपका संदेश तो आधी रात को मिला था, आपने भेज दिया था रात को 12 बजे से थोड़ा पहले। सत्यनारायण सैनी इंडिया से, थैंक यू वेरी मच। धनसुख जी ल्यूटन में, आप सबको पता था मेरा जन्मदिन है आज? मुझे नहीं पता था क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो बहुत छोटा था, पूछ ही नहीं सका नर्स से भाई आज क्या तारीख है। रोहिणी जी, आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच। रंजन जी, प्रतिभा जी, सुनीता जी, सुषमा जी, सुशीला जी, कितने नाम है भाई, ये सब दिल पर लिखूंगा, जगह हम जगह बहुत है दिल में भाई, बहुत बड़ा दिल है। थैंक यू, आज का चिंतन समेटते हुए पुनः धन्यवाद दोहराता हूँ आप सबको जिनके प्यारे प्यारे संदेश मिले, थैंक यू वेरी मच। रथ यात्रा की भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मिलते हैं 19 तारीख को SKSST कैंटन हैरो में, जो टेंपल है वहां।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा चल रहा है, भारत पैसे भिजवा रहे हैं ना, हाँ नोट कीजिए, 129.25 रुपए दे रहे हैं वो एक पाउंड के बदले, 129.25 रुपीज। यू कैन सेंड वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: फुटबॉल की बात करें भाई, अगला मैच जो है वो संडे को सैटरडे को 18 जुलाई को मैच खेला जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीसरे स्थान के लिए, थर्ड प्लेस के लिए, लेकिन फाइनल मुकाबला तो संडे को है, दैट इज स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, शाम को 8 बजे होगा फाइनल मुकाबला संडे को, लेकिन उससे पहले सैटरडे को यानी कल 18 जुलाई को फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड शाम को 10 बजे, शाम को इसलिए कह रहा हूँ कि देर तक उजाला रहता है लेकिन रात 10 बजे है भाई मैच यहाँ के समय के अनुसार, और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक हमारे यहाँ होता था जब मैं बहुत कंपटीशन लड़ा हूँ मंच से, नाटक में, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, स्किट में, मोनो एक्टिंग में, संगीत के फोक सॉन्ग्स कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ एक फर्स्ट प्राइज़ होता था, फिर सेकेंड होता था और एक थर्ड प्राइज़ भी होता था, उसके बाद हम उसे क्या कहते थे, कॉन्सोलेशन प्राइज क्या कहते, तसल्ली वाला पुरस्कार, तो भाई ये तो जीत के लाएंगे ही लाएंगे इंग्लैंड वाले, लेकिन हम आपको बताएंगे कि भाई मैच जब चलेगा तो जानकारी देते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel, at all protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
6: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
6: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
6: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
8: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg ya 2 times 10 kg ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344, a 24-hour line.
10: London, good news! Your favorite iTech, up TRS Cash and Carry, Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
11: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
12: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
14: sonatours.co.uk 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ जुलाई एंड गेट 600 ऑफ. कॉल सोनाटूर्स ऑन 0208 951 0111.
15: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
16: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
17: Travel Hub.
16: At all protected.
15: Leica. Leica Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
17: लाइका गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम, और आज तो सचमुच मुझे गोल्ड लग रहा है भाई, क्योंकि मेरे जो कोलीग्स हैं, साथी हैं, सीईओ हैं, राज बदन साहब, हमारे बाली भाई, हमारी काजल, हमारी जो है खुश, और हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के और दूसरे लोग भी जितने कोलीग्स हैं ना आसपास दिखाई दे रहे हैं, डोनी से लेकर के और रात के प्रेजेंट हमारे सैंडी शाह, सब ने मिलकर के एक साजिश रची है। एक बड़ा सा केक मंगवा रखा है, वो उनको लगता है कि जैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन साहब वो जो तैयारियां कर रहे हैं, क्या कहूँ, आप सब भी अपने घरों में बैठे कुछ तो यहाँ स्क्रीन पर भिजवा रहे हैं, मैं देख देख के खुश हो रहा हूँ भाई। थैंक यू वेरी मच। और हमारी नीलम जी कहती हैं, एक गाना हमारी तरफ से अपने नाम लगा लो, ये भी कोई बात हुई, आप गाना भी आप लगाएंगी, खाना भी आप लगाएंगी। नीलम बख्शी हमारी रेगुलर लिसनर भाई, हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर, और भाई मीना जी, सुनीता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, अपने वीरेंद्र जी और हमारे पंडित जी थैंक यू वेरी मच, आप सबके लिए भाई धन्यवाद के शब्द हैं। और हमारे क्या है, मोहित, मोहित वर्मा जी कहते हैं, आपके बर्थडे के मौके पर डिनर तैयार है, आ जाओ। सही सही एड्रेस तो बताओ भाई, देखो पहले बताना था, ये मेरे दोस्तों ने भी नहीं बताया, हमारे कुलीग्स ने भी नहीं बताया कि हम इतना कुछ कर रहे हैं भाई, केक ला रहे हैं, खाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पहले बताते तो मैं बीवी बच्चों को भी ले आता ना। Every single name on the screen, every single person who is attached to Laika Gold Radio, और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप सबके लिए बहनों भाइयों एक ही शब्द है, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी।

0: मुंडा तेरी अखा मारदा है पर किसी नु लगदी नहीं की करिए निशाना चूक जाऊंदा है का।
1: गुरदास मान की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, चुलबुला सा गीत। और भाई साथ साथ कुछ सूचनाएं आपके साथ साझा करता चलूं। लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी। सुन लीजिए द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे द 27th September। स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 टू 9:30 PM। क्रिएटेड बाई सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन पैलन MBE एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रिंग्स द रामायण टू लाइफ। रामायण को भाई प्रदर्शन बिल्कुल जीवंत रूप में विद 4 chapters, वी स्पोक 7 song soundtrack एंड ए फुल इंटरनेशनल कास्ट। टिकट्स के लिए www.diwalistory.com।

0: नहीं भूलेगी, बिल्कुल नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। क्या हुआ था? अरे हुआ क्या था साहब, छतरी उड़ गई थी हवा में, और क्या हुआ।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Extra podcast update.
0: याद दिला दो भाई, हमारा नया एपिसोड ईस्ट अफ्रीका नेशंस अब उपलब्ध है। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
4: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: डू इट फॉर योर वाइफ हु टोल्ड यू टू पिक अप ब्रेड बट इंस्टेड यू पिक्ड अप फ्रेड योर ग्रैंडसन अगेन। And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddie.
6: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
7: Ye hai
8: Leica Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
10: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
11: विजिट travelhubworld.com.
12: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
13: 25? Seriously?
12: Sounds like Ojo time.
13: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
12: Sorry about the wait. How can I help?
13: You can help me celebrate. I won.
14: Feel the fun. Play Ojo.
15: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
16: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
17: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
18: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
17: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
18: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
19: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
1: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में।
19: सच?
1: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
3: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फोर्ड।
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
17: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
17: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
9: Okay, Laura.
5: From the top.
6: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
10: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
20: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.

0: बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दी भाई प्रोग्राम के आखिरी घंटे में। अभी अभी जो गीत आप सुन रहे थे दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म प्रेम रोग।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Laika Gold.

0: लंडन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फुल अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन।
1: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
2: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
4: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। आप जानते हैं कि इस साल की, इस सप्ताह के, साल के क्या भाई, मैं तो कहता हूँ इस जन्म के, मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है, इस सप्ताह के कलाकार का नाम है संगीतकार रवि, पद्मश्री संगीतकार रवि। भाई उनके अवार्ड्स गिनवाने लगूं तो नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 1994 में मिला, इसके बाद केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मलयालम में, और भाई दूसरी साउथ इंडियन भाषाओं में भी उन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 1962, 1966 राना और खानदान, इन फिल्मों के लिए मिला उन्हें। संस्कृति कलाश्री अवार्ड 2006 और 2007 में चेन्नई में, तमिलनाडु में उन्हें मिला। और भाई सबसे बड़ा अवार्ड तो था संगीत प्रेमियों की प्रशंसा, और गीत कैसा भी हो भाई, मुझे हमारी वो जो नैना शाह है वो कहती है रवि जी खुद भी तो गाते थे। बिल्कुल गाते थे साहब, और उनके गीत सिंपल होकर भी, सीधी सादी तर्जों में होकर भी बहुत प्रभावशाली साबित होते थे। जरा सुनिए ये गीत, रवि जी की अपनी आवाज़ भी है और महेंद्र कपूर और दूसरे कलाकार भी हैं।

संगीतकार, गीतकार, गायक, कलाकार, बड़े होनहार भाई रवि साहब इस सप्ताह के आर्टिस्ट रहे और इस गीत में आपने रवि जी के साथ साथ महेंद्र कपूर और जयश्री की आवाजें सुनी। भले ही वो इस सप्ताह के कलाकार हैं लेकिन भाई यहाँ लाइका रेडियो जो है लाइका गोल्ड रेडियो पर गोल्डन गीतों की बात होती है तो वो सप्ताह के आर्टिस्ट नहीं, हमेशा के आर्टिस्ट हैं और उनके गीत बजते ही रहे।

0: सीधी सादी शब्दावली और भाई सीधी सीधी तर्ज और इतना मिठास इतनी मेलोडी, संगीतकार रवि का कमाल। और बहनों भाइयों, अभी तो वीकेंड तक आप और भी बहुत सारी रचनाएं रवि साहब की सुनेंगे, ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अगला गीत तैयार है।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मन पे बन।
1: प्रीतम ग्रेवाल जी और अमर ग्रेवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े संदेश आ रहे हैं प्यारे प्यारे।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: ye hai Laika Gold.
5: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
1: और ये सुपरहिट सॉन्ग पिछले घंटे में भाई बजते बजते रह गया, चलते चलते रोकना पड़ा समय की मर्यादा में रहकर। लेकिन हमने प्रॉमिस किया था, आप अपना प्रॉमिस निभाते हैं, फिर से सुनवाते हैं।

केत की आपका संदेश मिल गया है सर आंखों पर, थैंक यू। और कुमार साहब पॉल बेकरी वाले भाई, आपका तो केक समझो जैसे मुंह में पहुंच गया, मुंह मीठा हो गया, थैंक यू।

0: टीएमसी के भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने एक्स पर पोस्ट करके सोनम वांगचुक को बचाने की मांग की है। और जी आपका आशीर्वाद हैप्पी बर्थडे वाला सारा अंकों पर शत्रु जी मित्रु जी।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: साउथ ओल्ड ट्रैवल याद दिला रहे हैं कि FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call South Hall Travel for the most competitive Dubai deals. Their phone number is 0208-574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: From Christopher Nolan.
3: No one could stand between me and home, not even the gods.
2: Critics are calling The Odyssey cinema at its most epic. It's an unmissable masterpiece. Staggering, spectacular, and soul-rattling.
4: Ithaca's king is coming back.
5: Bringing vengeance.
3: Bringing it all.
2: The Odyssey, in cinemas now. Book tickets.
6: ये है
7: लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
8: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद unbeatable price
7: at all protected.
8: Visit travelhubworld.com.
9: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
10: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
11: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
9: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
10: Thanks. Playtime's over. Lovely.
12: Feel the fun. Play Ojo.
11: 18 plus gamble aware.
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
13: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18th July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, He's UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laabh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
14: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
16: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। इंडियाज फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसू, इल्फर्ड, IG2-6HA। बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
18: लौट आइए संगीत की ओर, स्वादिष्ट संगीत, टेस्टी हार, मधुर है संगीत, मीठा है संगीत। देखिए साहब, ऐसा लगता है जैसे कि म्यूजिक को चखा गया अजीब से। अनुराधा पोडवाल, मनहर उदास, गिरियुतों का मिठास।

पिंकी बहन, आपका संदेश मिला, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत प्यारी बहन है आप हमारी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और परिवार में सबको खुश रखिएगा। संतोष जी थैंक यू। जय भट्ट साहब सुन रहे हैं, कह भी रहे हैं कुछ सर आंखों पे। और शेखर जी आपने बड़ी खूबसूरत तस्वीर भेजी है, मेरी तो है ही है, आपकी भी, हम दोनों बहुत हैंडसम लग रहे हैं, सही बताओ।

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
2: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: और लीजिए साहब, करेंसी रेट्स में बता रहा हूँ, नोट कीजिए। इस समय एक पाउंड के बदले ये दे रहे हैं LemFi वाले भारतीय मुद्रा में 129.39 रुपीस, पाकिस्तानी 373.6, श्रीलंकन 451.67, बांग्लादेशी टके दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 165.68 एंड अफगानी 88.64।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA
4: Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Well, the gold is trading at the rate of 95.6 pounds per gram.
4: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: और बहनों भाइयों, धीरे धीरे कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं हम, लेकिन भाई याद दिला दें, बहुत प्यारे प्यारे यार ये चित्र बना करके राजेंद्र राज साहब अपने बड़ी खूबसूरत कसीदाकारी की थी पिक्चर में, कसीदाकारी क्या कहते हैं उसको, सिलाई कढ़ाई भाई बुनाई, बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, जैसे हमारे जसकरण सिंह जी ने बनाई, जैसे हमारे शेखर भाई ने, बहुत बढ़िया कारीगरी की है भाई, हंसी भी आती है और गर्व भी होता है कि आप लोग कलाकार हैं पूरे। आंटी जी, आपका संदेश मिल गया, थैंक यू। नैना शाह, थैंक यू। और भाई भारत से जो भेजते हैं वो और भी अच्छे लगते हैं। केतकी ने हिंदुस्तान से हमें संदेश भेजा है। विजय कहते हैं कल मेरा भी बर्थडे है। विजय भाई आप कॉपी कर रहे हैं मुझे क्या? नहीं, पीछे पीछे आए थे आप, हाँ एडवांस में मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दैट।
5: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
1: T's and C's apply.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07939।

बड़ा सॉन्ग लता मंगेशकर की आवाज। और फिल्म कौन सी रही होगी, किस फिल्म का गीत था ये? शायद साथी फिल्म का, और साथी है तो भाई नौशाद साहब का संगीत रहा होगा। भाई इस संगीत के बारे में क्या कहूँ, संगीत पूरी दुनिया में सबका संगीत बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है, बहुत मीठा है और प्रभु का वरदान है। और बहन भाइयों ये सही बताऊं आपको, प्रोफेशन इसलिए चुना, मैं तो अभिनय में बहुत दिलचस्पी रखता था और जब अपनी यूनिवर्सिटी में मैं 3 बार बेस्ट एक्टर डिक्लेयर किया गया तो मैं अभिनय करने के लिए निकला था घर से कि भाई एक्टिंग करेंगे तो पैसे कमाएंगे। मुंबई का रुख किया था लेकिन उससे पहले ही मुझे बाहर विदेशों का कॉन्ट्रैक्ट मिला और कॉन्ट्रैक्ट मिला भाई संगीत के कार्यक्रमों से जुड़ गया मैं और अब संगीत मेरी ज़िंदगी बन गया। और संगीत को जिंदगी बनाने वाले संगीत प्रेमी होते हैं आप जैसे, तो बहन भाइयों कार्यक्रम को समेटते हुए धन्यवाद दें कुछ लोगों को जिनके नाम मेरे पास पहुंचे हुए हैं। रागनी बिटिया आपकी दुआएं, आपका प्रेम झलकता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीरा जी आपका संदेश मिल गया है, सो नाइस ऑफ यू। प्रज्ञा जी थैंक यू वेरी मच। और हमारे किशोर भाई किशोर पांड्या कहते हैं पूरी गैंग यहाँ मौजूद है मेरे पास, सब आपको दुआएं दे रहे हैं। भाई एक बात बताऊं आपको, ये जो जन्मदिन आता है ना ये उम्र नहीं बढ़ाता है, एक्चुअली उम्र को घटाता है। सही बात है, कभी ध्यान से सोचिएगा, अगर मैं 80 बरस की उम्र लेके आया तो 1 बरस और कम हो गया आज। तो जब भी जन्मदिन आता है आयु को घटाता है, लेकिन दोस्तों का प्यार और शुभकामनाएं और दुआएं जब आती हैं तो वो उम्र को बढ़ाती हैं। तो भाई किशोर भाई कहते हैं मेरे यहां इस समय है फरत भाई, फरत हुसैन, सफदर हुसैन, सलीम भाई और भाई सारे के सारे कहते पूरी गैंग यहाँ मौजूद है। तो भाई कांति कांति भाई देसाई और कहते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्यारे प्यारे लोग हैं तो वो सब आपको दुआएं दे रहे हैं और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। किरण जी आपका संदेश मिल गया है, थैंक यू वेरी मच। और भाई अगर कोई रह गया हो तो दिल पर लिख कर ले जा रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये सांसें, ये जीवन, ये भाई क्या कहते हैं, जो भी मेरे पास है आप ही का दिया हुआ है, एहसान है आपका, कैसे कोई चुका सकता है, आपके प्यार को कैसे कोई भुला सकता है। थैंक यू वेरी वेरी वेरी वेरी मच।

जी हाँ, ये दोनों गाने सुनकर कितनी बार हम सुनते हैं ये गाना, लेकिन आज तो स्पेशली हम अप्रिशिएट करेंगे इन गानों को, क्योंकि सचिन भौमिक नाम है भौमिक, सचिन भौमिक, दैट्स अ वेरी बंगाली, लेकिन इनका स्पेलिंग एक्चुअली BHAUMICK होना चाहिए, लेकिन BHOWMICK लोगों ने लिखना शुरू कर दिया भौमिक, तो भौमिक ही हो गया। 17 जुलाई 1930 में इनका जन्म हुआ, मतलब के 96th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सचिन भौमिक, हु एक्चुअली पास्ड अवे ऑन 12th of April 2011। अब इनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि 94 फिल्म्स ही रोट स्टोरीज ऑफ एंड स्क्रीन प्लेज, इनका मेन पेशा था राइटिंग स्टोरीज ऑफ फिल्म्स। अब मैं जिन फिल्मों के नाम लूँगा और कहूँगा कि आपने ये फिल्में जब देखी और उसमें आपने राजेश खन्ना को अप्रिशिएट किया और अमिताभ बच्चन को अप्रिशिएट किया या शाहरुख खान को अप्रिशिएट किया, लेकिन जब देखा जाए तो स्टोरी किसने लिखी, इस फिल्म को जन्म किसने दिया, जैसे कि एक गाने को एक राइटर जन्म देता है, वैसे ही एक राइटर एक फिल्म की कहानी को जन्म देता है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है पूरी। एंड उन्होंने पूरी लाइफ में एक ही फिल्म डायरेक्ट की थी, वो थी राजा रानी, जिसका गाना आपने सुना, मैं एक चोर तू मेरी रानी। कितनी ब्यूटिफुल, आई मीन 100 करोर वाली फिल्म, यू नो, आज की तारीख में अगर गिना जाए तो वो फिल्म ने 100 करोड़ आज की तारीख में कमाया होता। राइटिंग वॉज हिज मेन वर्क, जैसे मैंने कहा, और स्क्रीन प्लेज भी लिखते थे वो। एंड देन ही इज़ बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर सम ऑफ द मेजर फिल्म्स। अगर मैं आपको नाम बताऊं सब फिल्मों के, जैसे कि अवॉर्ड्स इनको मिला था, एक ही फिल्म का अवॉर्ड मिला था इनको, एंड दैट वॉज कौन सी फिल्म थी, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी में इनको बेस्ट स्टोरी का अवॉर्ड दिया गया था, और नॉमिनेशंस मिले थे, आराधना थी एक, और दूसरी फिल्म थी वो थी पहचान, पहचान फिल्म। सो नॉमिनेशंस वाले और अवॉर्ड वाले गाने, फिल्म के गाने मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। एंड फिल्मों के नाम ऐसे मैं बताऊं तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अनुराधा। You know, he was associated with several hits such as Anuradha 1960 की। शुरुआत इनकी सबसे पहले हुई मोहन सैगल, नरगिस, उसमें नरगिस स्टारर, लाजवंती फिल्म 1958 की। उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया अनुराधा, फिर उसके बाद आई मिलन की बेला, जानवर, लव इन टोक्यो, आए दिन बहार के, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, आया सावन झूम के, आराधना, फिर 1970s में पहचान फिल्म, आन मिलो सजना, कारवां, यस एंड बेईमान, दोस्त फिल्म, फिर खेल खेल में जिसमें ऋषि कपूर जी थे, एंड हम किसी से कम नहीं उसमें भी ऋषि कपूर जी थे, गोलमाल, यस, कर्ज, 1980s में कर्ज फिल्म की स्टोरी, फिर 2 और 2 5, बेमिसाल, जमाने को दिखाना है, कभी कभी वो को राइटर होते थे उनके साथ, या तो डायलॉग्स में कोई और आ जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही यूज्ड टू बी राइटिंग द स्टोरीज ऑफ द फिल्म्स। पर 1980s से 90s दे यूज टू शेयर आउट, ज़्यादातर स्क्रीन प्ले ज़्यादा किए थे इन्होंने 80s और 90s में, नास्तिक फिल्म, अंदर बाहर, साहेब, फिर आई थिंक दूसरी फिल्म में जो 90s की जो मुझे याद है, कोयला, फिर करण अर्जुन, मतलब राकेश रोशन जी के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा, ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कोयला, फिर सोल्जर, फिर आ अब लौट चलें, कोयला मैं 2 बार बोला नहीं कीमत, जो याद आता है मैं बोलते जाता हूँ। एंड देन 2000 के बाद कोई मिल गया, ऋतिक रोशन, किसना, यस एंड क्रिश, ये सब फिल्में इन्होंने मतलब स्क्रीन प्ले किया या लिखी। वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन सचिन भौमिक, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ पे भी मैं गौर करूँगा, क्योंकि इन्होंने शादी की थी हमारी तीन देवियाँ की हीरोइन, एक थी जो कल्पना, कल्पना

0: जयंती जय ओम प्रकाश द फादर इन लॉ ऑफ राकेश रोशन सुभाष गई नासिर हुसैन फिर ऋषिकेश मुखर्जी प्रमोद चक्रवर्ती शक्ति सामंत इनके साथ एक नहीं दो नहीं पर साथ साथ फिल्में भी की सो वी आर रिमेम्बरिंग सचिन भौमिक व्हाई नॉट ए एंड सेकंड आवर में वी आर गोना रिमेम्बर स्नेहल भाटकर And we are going to remember Zarina Wahab. Zarina Wahab ki 67th birthday hai aaj. And in the end, we are going to also remember Rita Bahaduri. Rita Bahaduri, not the sister of Jaya Bahaduri. This is an actress called Rita Bahaduri. Her 8th death anniversary. Oh, Julie wali. Julie ki heroine. Haan, unki 8th death anniversary hai. So, चार चार ट्रिब्यूट्स है जुड़े रहिएगा
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
4: 25? Seriously?
3: Sounds like Ojo time.
4: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
3: Sorry about the wait. How can I help?
4: You can help me celebrate. I won.
5: Feel the fun. Play Ojo.
6: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
7: Southall travel 7 days a week. Southall travel 24 hours a day. We're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
11: Two businesses.
12: Same town.
11: Same service.
12: One appears on page one of Google.
11: The other doesn't.
12: Guess which one gets the customer?
11: The truth is brutal.
12: The first page of Google gets the business.
11: Everyone else gets what's left.
12: So here's the real question.
11: When your customers search for what you sell, do they find you?
12: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है
14: तो फिर इंतजार क्यों हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में
13: सच
14: बिल्कुल देश का असली स्वाद लाजवाब मिठाइयां और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह
15: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैंसिल इल्फोर्ड IG2 6HA कॉल करें 07555-506-015 बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन
16: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 24-hour line.
17: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
18: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199.

0: £50 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: 1970 की फिल्म पहचान, जिसमें सचिन भौमिकी जी को फिल्म बेस्ट स्टोरी अवार्ड नॉमिनेट किया गया था, और दूसरे नॉमिनेशंस थे सोहनलाल कन्वर फॉर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, नीरज फॉर द कंपोजिशन बस यही अपराध मैं किया करता हूँ, और ये सब नॉमिनेशंस थे। लेकिन मुकेश जी इस गाने में इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वर्मा मलिक को कंपोजिशन सबसे बड़ा नादान, एंड शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था, और चांद उस्मानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। बट द स्टोरी वॉज रिटन बाय द वन वी आर रिमेम्बरिंग हु गॉट नॉमिनेटेड, सचिन भौमिक।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3432, Indian rupees 129.29, Pakistani rupees 373.39, Afghanis 88.57, Kenyan shillings 173.6 and Mauritian rupees 63.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £95.30 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: मैं हूँ अश्विनी, हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी, फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।
4: रूप तेरा मस्ताना प्यार

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio Partner, Leica Radio Network.
2: London, good news! आपका favorite iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: Minar Jewelers Best Overall Business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
6: Across London, this is Ballybrambat on Leica Gold.
7: सचिन भौमिक ने कहानी लिखी थी खेल खेल में,

0: खेल खेल में अनदर ब्यूटीफुल फिल्म दैट वाज अ हिट. जन्म किसने दिया, एक कहानी लिखकर सचिन भौमिक ने. नेक्स्ट, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. कितनी 94 फिल्म्स सचिन भौमिक, ये तो होना ही था, हमने याद करना ही था उनको. थैंक यू फॉर योर मैसेजेस.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: कितने प्यारे गाने हैं ना, आपको बड़ा मजा आएगा इस आवर में भी, क्योंकि स्नेहल भाटकर जी के जो कंपोज किए हुए गाने आर एवरग्रीन, नो डाउट अबाउट इट। उनका नाम था वासुदेव गंगाराम भाटकर। अभी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा इनका नाम कैसे कन्वर्ट हो गया इनटू स्नेहल भाटकर। ही वाज बोर्न ऑन 17th ऑफ जुलाई 1919 एंड ही पास्ड अवे ऑन 29th मई 2007। सो 1919 में जन्मे हुए और आज इनकी बर्थ तिथि, सो मतलब के वी आर एक्चुअली रिमेम्बरिंग हिम ऑन हिज 107th बर्थ एनिवर्सरी, 107th बर्थ एनिवर्सरी। इनके पिताजी गुजर गए जब वो 18 महीने के थे और माताजी टीचर थी और एक सिंगर भी थी, सो शी बिकेम हिज इंस्पिरेशन म्यूजिक में, एंड ही पिक्ड अप द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक। जो नॉर्मल बेसिक्स होते हैं वो माताजी ने उनको सिखा दिए एंड उनको चस्का चढ़ गया संगीत का, एंड ही पिक्ड अप द बेसिक्स ऑफ म्यूजिक फ्रॉम हर। एंड आफ्टर मैट्रिकुलेशन, जो 10th ग्रेड होता है, ही लर्नड म्यूजिक फ्रॉम अ म्यूजिक स्कूल इन दादर, दादर मुंबई ऑफ कोर्स, जहाँ पे सिद्धि विनायक है, यू वुड नो दादर एरिया। नाउ ही वॉज वर्किंग फॉर HMV, हिज मास्टर्स वॉइस, और वहाँ पे एक रूल हुआ करता था कि यू कैन नॉट वर्क आउटसाइड द जॉब, जो नौकरी करते हो उससे बाहर कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते हो। नाउ ही वॉज वर्किंग फॉर HMV, बट ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ कंपोजर आउटसाइड हिज जॉब, सो ही यूज्ड pseudonyms, यानी कि नाम बदल कर काम करते थे टू अवॉइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर उन्होंने लिखा होता कि वासुदेव गंगाराम भाटकर और बाहर के गाने कुछ कंपोज करके उनका नाम डाला, तो HMV वुड कॉल इट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इन्होंने क्या किया, इनको इन्होंने नाम यूज़ किया बी वासुदेव। सो बी वासुदेव में भाटकर वासुदेव, इन लोगों को पता नहीं चलता था कि HMV को कि वो ही आदमी है। एंड देन ही यूज्ड द नेम स्नेहल कंपोजिशंस में। द नेम स्नेहल भाटकर बिकेम इज प्रोफेशनल नेम आफ्टर 1950, क्योंकि 1947 में इन्होंने नीलकमल मूवी, पहली मूवी में कंपोज किया था, तो 1950 से इनका नाम प्रोफेशनली स्नेहल भाटकर हो गया। द नेम स्नेहल कहाँ से निकला, इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम हिज देन न्यूली बॉर्न डॉटर स्नेहलता। वो हीरोइन नहीं, इनकी डॉटर का नाम स्नेहलता था, और स्नेहलता इज़ नाउ मैरिड टू रामकृष्ण बारडे, एंड 3 बच्चे उनके थे, रमेश भाटकर, फेमस मराठी एक्टर है वो अभी, अविनाश भाटकर और स्नेहलता। और स्नेहलता के नाम से इन्होंने स्नेहल कर दिया और स्नेहल भाटकर के नाम से मशहूर हो गए। फर्स्ट हिंदी मूवी नीलकमल 1947। स्पेशल बॉन्ड उनका था केदारनाथ शर्मा, यू नो केदारनाथ शर्मा, द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड लिरिसिस्ट, जिन्होंने काफ़ी लोगों को ब्रेक दी थी, जैसे कि राज कपूर, और उनके हिट गाने जैसे कि कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, दैट्स द जेनिथ ऑफ भाटकर्स करियर, 1961 की जो फिल्म थी। दूसरे गाने ऑफ कोर्स जो थे, ए मेरे हम सफ़र फिल्म, छबीली का गाना 1960 का। अब छबीली फिल्म में स्नेहल भाटकर ने कंपोज किए गाने और राइटर थे एस रतन। हम याद कर रहे हैं नन अदर देन स्नेहल भाटकर। फिल्में थी इनकी, जो फेमस फिल्में थी, हमारी बेटी 1950 की, फिर दूसरी थी बिंदियाँ, देन आज की रात। फिल्में तो 19 थी, लेकिन उसमें थे फरियाद, हमारी याद आएगी, छबीली, जलदीप, दिवाली की रात, और आखिरी फिल्म थी पहला कदम। स्नेहल भाटकर के गाने सुनते हैं हम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: The latest rates of SBI UK For £1 in British sterling, you can get up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: We hit
3: Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: Well, Saturday, that's tomorrow at 10 p.m. It's England versus France for the third place playoff. And that's going to be in Miami. On Sunday, of course, Spain versus Argentina in New York, New Jersey Stadium in East Rutherford. And predictions are Spain 58% and Argentina 42%. Let's see who wins. FIFA World Cup 2026, which was founded in 1930. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Gold Afternoons.
5: Gold Afternoons.
4: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 0208574 8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Kajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
9: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
8: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
8: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
9: Visit Kajal's Couture. UK.
10: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery. Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
10: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
10: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
12: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है

0: मजा आया ना?
1: यस अगेन, वो जोड़ी मैंने जो कही थी आपको ऑफ स्नेहल भाटकर एंड केदार शर्मा, इन दोनों ने मिलकर

0: इस फिल्म को भी हिट बनाया और गाने को भी हिट बनाया।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is like a gold.
0: All right, we got some news for you here. And Mela 2026, Laika Radio is the exclusive radio partner of Leicester Mela, again on 15th and 16th of August at Abbey Park. Also, the Bradford City Mela on 1st and 2nd August at City Park and Centenary Square. Ragasan, Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at laikaradio.com.
3: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
4: ये है लाइका गोल्ड।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 020-8574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra Podcast Update.
0: Podcast episode 25, Leica presenters take over. Catch this epic conversation with Donny Brasco, myself, Bali Brambat, and Neka, Ruby Raza, Radio Wali, and Anissa Nasser, from the sacrifices presenters make for their careers to the unexpected challenges along the way. Leica Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
0: Next, I'm going to play a song from film Julie, because we're going to do a tribute of Rita Bahaduri. Sunte jaiyega.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं। श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: India mein, Pune mein, there is an institute called FTII. FTII, yani ke Film and Television Institute of India. वहाँ पे 1973 में एक क्लास थी ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ट्रेनिंग टू बिकम एक्टर्स. वो क्लास ऑफ 1973, दैट बैच हैड सम बिग नेम्स इन इट. उनमें से जो बड़े नाम मुझे याद हैं वो है जैसे कि नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, कमलजीत सिंह, शैलेंद्र सिंह, ये सब नाम 1973 के बैच में थे. और दो और नाम जिनकी आज ट्रिब्यूट्स हो रही है, हमने जरीना वहाब की ट्रिब्यूट जो की, एंड नाउ वी आर रिमेम्बरिंग रीटा भादुरी. रीटा भादुरी की 8th डेथ एनिवर्सरी है और जरीना वहाब इज 67 ईयर्स ओल्ड टुडे. ये दोनों इस बैच में हुआ करते थे, FTII 1973 का बैच, और दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी. अब रीटा भादुरी को हम अगर याद करके उनकी कहानी कहें तो इट्स नॉट जया भादुरीज सिस्टर रीटा भादुरी विद द सेम नेम. एक्चुअली रीटा भादुरी 1968 से आई थिंक शी डिड 2018 तक 50 ईयर्स शी डिड. शी वॉज बॉर्न ऑन 4th ऑफ नवंबर 1955 अप टू 17th ऑफ जुलाई 2018. शी पास्ड अवे ड्यू टू किडनी फेलियर. शी वॉज बॉर्न इन लखनऊ यूपी एंड पास्ड अवे इन मुंबई. अब सपोर्ट रोल्स में उन्होंने 1970s, 80s और 90s में ज़्यादातर सपोर्ट रोल्स किए थे. फिल्म जूली में इन्होंने जो काम किया वो दैट वॉज एब्सोल्युटली फैबुलस. यस, रीटा भादुरी के दूसरी की दूसरी फिल्में अगर मैं याद करूं तो सावन को आने दो 1979 की, है ना, प्यार जिंदगी है 1996 नवीन निश्चल के साथ, एंड लास्ट उनका रोल था एक टीवी सीरियल में, दैट वॉज निमकी, निमकी मुखिया, उसमें वो मुखिया बनी थी एंड शी वॉज द ग्रैंड मदर इन दैट पर्टिकुलर सीरियल. रीटा भादुरी वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्ट्रेस. एंड नेक्स्ट गाना जो होगा दैट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ जरीना वहाब एंड रीटा भादुरी इन द फिल्म सावन को आने दो. जरीना वहाब इज सिंगिंग एंड उसमें एक सीन आता है डांसिंग का, वो डांसिंग में रीटा भादुरी है. सुनते जाइएगा, वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन रीटा भादुरी.
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency is equivalent to 1 sterling pound. US dollars 1.3443, Indian rupees 129.41, Pakistani rupees 373.65, Afghanis 88.64, Kenyan shillings 173.74, and Mauritian rupees is 63.38.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £95.64 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. London's biggest classics all day. Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: You're listening to Bali Brahmert in Gold Afternoons. Gold Afternoon. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favourites at Asian shops near you.
4: If you're ready to grow your business, at Barclays we say... Let's go. From opening that second store to boosting your production, let's get growing. Whatever the goal for your business, with our £22 billion lending fund, we're ready to back UK businesses like yours. Search Barclays Business Banking. Barclays, backing your future. Subject to normal lending assessment, status and application. Terms and conditions apply.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
9: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
11: Shaam chalne lage.
10: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
12: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Yeh hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
13: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
12: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
14: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
15: experience the ultimate escape. 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
16: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: इस गाने में दोनों थे, जरीना वहाब और रीटा भादुरी. व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों की ट्रिब्यूट्स है आज.
1: दिस इज द नंबर वन एशियन कमर्शियल ग्रुप इन लंदन, कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड.
0: इस गाने में भी दोनों हैं. फिल्म है गोपाल कृष्णा 1979 की, जसपाल सिंह, हेमलता एंड कोरस. आयो फागुन हथीलो, दोनों जिनकी ट्रिब्यूट्स हमने आज की, जरीना वहाब और यस ऑफ कोर्स रीटा

What a beautiful song and the lovely music that carries you into the holy mood. जो होली नहीं है लेकिन लग रहा है कि आज होली है. रविंद्र जैन का संगीत. And we end with सावन को आने दो, जसपाल सिंह एंड कल्याणी मित्र. And next hour we shall start with a tribute of Zarina Wahab. Who is 67 years old.

0: के चल, मौसम भी है वादा भी है। टैक्सी चोर का गाना है लेकिन मिलता जुलता है ना। जी हाँ, कभी कभी गाने मिल जाते हैं। ये टैक्सी चोर जो फिल्म थी जिसमें किशोर दा ने बड़ी बेहतरीन अदा से गाया है, एंड मैं याद कर रहा हूँ नो अदर पर्सन देन ज़रीना वहाब जी, एंड मेरे मित्र मेरे दोस्त आदित्य पंचोली जी की पत्नी। अभी बताता हूँ कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे। शायद आपको मालूम भी हो, लेकिन जिनको ना मालूम हो उनके लिए, ज़रीना वहाब वॉज बॉर्न इन विशाखापट्टनम, वेरी फ्लुएंट इन हर मदर टंग तेलुगु, एंड एडिशनल टू उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कितनी अच्छी ज़बानें बोलती है वो। एंड शी वॉज ट्रेंड एट दी FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और मैंने आपको बताया था उस बैच में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे नाम थे, नसीरुद्दीन शाह जैसे, और रीटा भादुरी, उनका भी नाम आता है इस लिस्ट में 1973 के बैच में। एंड एक बार राज कपूर जी ने निंदा की थी ज़रीना वहाब के बारे में, उन्होंने कहा कि अपीयरेंस ठीक नहीं है, और उन्होंने जब नेगेटिव फीडबैक ऐसा दिया, सो शी टुक इट वेरी पॉजिटिवली। एक्चुअली शी गॉट, उन्होंने पार्टियों में जाना शुरू कर दिया, एंड शी स्टार्टेड अटेंडिंग फिल्म पार्टीज एंड इवेंट्स, एंड मेड हर फेस अ लिटिल बिट नोन, एंड शी वर्कड ऑन हर लुक्स एंड एवरीथिंग, एंड शी वॉज यूजली कास्ट इन द मिडल क्लास गर्ल आफ्टर हर फर्स्ट लीडिंग रोल इन बासु चैटर्जी की फिल्म जो थी चित चोर, वहाँ पर उनकी फर्स्ट लीडिंग रोल थी। एंड इन मूवीज लाइक अगर, जज्बात, सावन को आने दो, रईस ज़्यादा, घरौंदा, शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर अ फिल्म फेयर अवॉर्ड ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी, घरौंदा 1977 में। और कितनी मलयालम और तेलुगु और तमिल फिल्म्स में उन्होंने काम किया। एंड आई थिंक शी वॉज द मदर ऑफ शाहरुख खान इन माई नेम इज़ खान, दैट्स राइट, माई नेम इज़ खान में शाहरुख खान की माता जी बनी थी। एंड व्हाट एन एक्ट्रेस, यू नो, शी मेट आदित्य पंचोली, एक फिल्म थी कलंक का टिक्का, कलंक का टिक्का में सेट्स पे वो मिले, एंड दे गॉट मैरिड इन 1986, एंड देव गॉट अ डॉटर सना एंड अ सन सूरज, एंड मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी बेटे के साथ हुई ये वो, लेकिन हम आज के दिन ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम उनको हैप्पी बर्थडे करेंगे। हैप्पी 67th बर्थडे टू द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस इन द फिल्म इंडस्ट्री, हु हैज़ गिवन अस सम वंडरफुल फिल्म्स, एंड बिकॉज ऑफ हर चार्म एंड हर एक्टिंग The films have been a hit. So, happy birthday, Zarina Wahab ji. Main hoon Bali Brahmbhatt on Like a Gold with Gold Afternoons, available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home, and likeagold.com. Also available on Radio Player app. And it is the 374th day of Like a Radio Midlands. Yahan pe Sandy Shah 4 baje aayenge. And he will get you into, of course, drive time. And on Leica Radio Midlands, it's going to be Annika. Annika will come in place of Raj Baddanji. And not only that, I can tell you it's the 305th day of Leica Gold. It was Dil Se rebranded. Leica Dil Se rebranded on 13th of September 2022. And after that, 4 saal ho gaye, and the fourth year, 305th day, very soon it's going to be 5 years. And 815th day of Leica Greater Manchester. Sunte rahiyega, aage hamare Artist of the Week, Ravi, aayenge.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक म्यूजिक डायरेक्टर रवि। फिल्म है नजराना, 1961 का गाना।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: जी हाँ, रवि शर्मा का बर्थडे एंड ऑफ कोर्स हमारे विजय गुनोआ जी का बर्थडे एंड वंडरफुल बर्थडे आई वाज टोल्ड ऑफ हमारे सत्य जैमिनी, अ वंडरफुल लिसनर ऑफ लाइक अ गोल्ड. हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ देम एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. अब एक ट्रिब्यूट करने जा रहा हूँ, सुनते रहिएगा. और वो ट्रिब्यूट है ऑफ अ वंडरफुल एक्टर कॉल्ड स्वरूप दत्ता. स्वरूप दत्ता वॉज बॉर्न ऑन 22nd of June 1941 एंड ही पास्ड अवे ऑन 17th July 2019. यस, दैट वॉज 7 years अगो. द बंगाली एक्टर हु डिड अ वंडरफुल एंड मार्वेलस रोल इन द फिल्म उपहार विद जया बच्चन. ओ, तब तो जया बाधुरी थी वो. तो उनका एक गाना रफी साहब का गाया हुआ विच इज एवरग्रीन. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की लिरिक्स है. फिल्म उपहार 1971, अ ट्रिब्यूट टू स्वरूप दत्ता ऑन लाइका गोल्ड. एंड सैंडी शाह इज हियर, ही इज गोना टेक ओवर एंड टेक यू फॉर अ ड्राइव एंड इट्स गोना बी अनिका ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. It's the 374th day of Leica Radio Midlands. Bali Brambatka, namaskar.
1: Feel good hits in the sun with Leica Gold.

0: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। इंडिया फेमस छोले भटूरे अब मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
6: Minar Jewelers Best Independent Retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208-767-7547.
7: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
8: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
7: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
0: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
10: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
11: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica Gold.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: They are, and they're very pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208 574 8410. Atoll protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Gold Drive with Sandy Shah.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208 782 8833 or visit travelhubworld.com.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं. श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
6: News, आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. Full iTag at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. Minar Jewelers, best overall business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Sandy Shah on Gold Drive.
0: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
8: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड आपने ऑलरेडी शो को तो ट्यून कर दिया, कैलरीज बर्न कर ली, आधे से एक्सरसाइज शुरू करवा दी आप सबकी। इट इज अ फैंटास्टिक फ्राइडे फॉर ऑल ऑफ अस। पूछिए आप सबसे कैसे हैं, आप सब बताइए जरा अपनी हालचाल। पूरा वीक निकल गया और फ्राइडे आते से हम सभी कितने रिलैक्स चिलैक्स एंड बिल्कुल फुल ऑन फ्राइडे वाले मूड में आ जाते हैं। अब आप समझ ही चुके हैं पिछले कुछ महीनों में कि फ्राइडे जो है एकदम शांत शांत वाले गीत तो होते ही नहीं है, क्योंकि हम सबके अंदर आ जाती है माता, है ना। और हम लोगों को लगता है कि अब जो है हम जिंदगी में जो हमें ये हसीन पल दिए हैं, जो हमारे अंदर ये सांसें चल रही हैं, और कभी कभी खा पी के हम जो वज़न बढ़ा देते हैं, तो वो कैलरीज बर्न करनी चाहिए। और इसीलिए आप और हम जो है यहाँ पे फुल ऑन वॉल्यूम कर देते हैं, एंड फुल ऑन वॉल्यूम होने के बाद में पैर थरकाना शुरू हो जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर लग चुका है, सारे के सारे धुरंधर आ रहे हैं, अपने अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। मेरे साइलेंट लिसनर्स आ जाइए, आज तो फ्राइडे, दुनिया जहाँ में जहाँ पे भी आप हमें सुन रहे हैं आज ये खेलो तो बनता है, बिकॉज ये शो ऐसा है कि एनी वे आप और कुछ काम करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप इसे एंजॉय करने वाले हो। तो क्या हमेशा की तरह मैं सुनाने वाली हूँ कोई थियोरी, देखते हैं। एंड आज फ्राइडे है तो डांस मस्ती मज़ा पे ही बातें चल रही हैं। आई एम श्योर आप सभी ने जो मैं अभी बात करने वाली हूँ वो एक्सपीरियंस की है, और शायद हो सकता है कि आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा। डांस की बात चल रही है, ओके। सो हमारे यहाँ पे कोई भी जश्न हो म्यूज़िक होता है, और जब म्यूज़िक होता है तो डांस होता है। पर्टिकुलरली इन हमारे अपने इंडिया में जब शादी बारात में जब लोग नाचते गाते हुए दूल्हे राजा की दुल्हन को लेने सारा का सारा पूरा जो कुनबा जाता है सबके सब डांस करते हुए जाते हैं, है ना। एंड नागिन डांस जो है ये स्पेशल होता है हमेशा। तो आई स्टिल रिमेम्बर हमारे यहाँ के एक भाई साहब जो हैं अपने दोस्त की शादी में बकायदा एक मैट लेके गए थे, मैट रास्ते पे बिछाते थे पूरा नागिन के जैसे लोट लगाते थे, फिर वो मैट रोल करके फिर किसी के हाथ में फिर डांस करते हुए जा रहे हैं। अगर आप इंडिया में बड़े नहीं हुए हैं, आप जहाँ जहाँ जिस देश में बड़े हुए, तो क्या बारात में जी हमारे पे एक होता है नागिन डांस, एक होता है कि बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र तो हमारे गणपति डांस होता है, तो कोई एक प्रॉपर उसमें ये नहीं था कि इसी टाइप का डांस होना चाहिए। इट्स अ फ्री स्टाइल डांस फॉर अस इन गणपति डांस, दैट इज़ व्हाट वी कॉल गणपति डांस। आप यहाँ पे ऐसे कोई स्पेशली डांस है ज़रा ज़रूर बताइए, और क्या आपने भी कभी जिंदगी में नागिन डांस किया है ये भी हमें जरूर बताइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपीस और 90 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.

0: Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: तो मैच होने वाला है सैटरडे यानी कल 18 जुलाई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, वो होगा रात 10 बजे एंड संडे 19 जुलाई फाइनल होगा रात 8 बजे स्पेन और अर्जेंटीना के बीच एंड

0: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
1: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
0: सच?
1: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
2: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
3: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Southall Travel.
4: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
3: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
12: sonatours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
13: Leica Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो leicagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
15: Badan pe sitare lapete hue

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. मोहम्मद रफी की आवाज़ में प्रिंस विच वॉज रिलीज्ड इन 1969 उस फिल्म से बदन पे सितारे लपेटे हुए हैं। उसके पहले भी जो गीत हमने सुनाए उसमें डॉन फिल्म से लिया था गीत आशा भोसले की आवाज़ में ये मेरा दिल यार का दीवाना। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू विश विजय गनवा जी आपको बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। हमारे लायका के ये बड़े ही डेडिकेटेड लिसनर हैं और सभी लिसनर्स का बहुत सभी प्रेजेंटर्स का बहुत ज़्यादा साथ निभाते हैं। विजय जी, आपको हमारे लायका गोल्ड की तरफ से, सारे प्रेजेंटर्स की तरफ से, आपकी दोस्त अश्विनी की तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। कीप स्माइलिंग, इट्स योर स्पेशल अपीयरेंस डे ना, अपीयरेंस डे, प्रगट दिन ही कहते हैं ना हम लोग। आज बिल्कुल आपका बर्थडे है तो इन्जॉय करिए। और मिला लेंगे घड़ियाँ, इट्स 32 मिनट्स पास्ट 7, 7:32। और हर रोज़ इस समय हम आपको सुनाते हैं कोई ना कोई लाइफ थियरी। तो आज द ब्रोकन विंडो, आज की लाइफ थियरी का टाइटल द ब्रोकन विंडो। तो वहाँ यूँ कि 90s में न्यूयॉर्क में काफ़ी दंगे भड़के थे और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने काफ़ी चीज़ों को लूटपाट की। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी उनकी विंडोज़ तोड़ी फोड़ी, जहाँ पे जो जो चीज़ें अच्छी सुंदर दिख रही थी वहाँ पे ग्राफिटी करके पूरा तामझाम जो है उसको कम्प्लीटली अपसाइड डाउन कर दिया। उस समय जो शहर दिख रहा था ऐसे लग रहा था मानो कोई तूफान आके सारी चीज़ें उजाड़ के गया है, और जबकि कोई तूफान, ये नेचुरल तूफान नहीं था लेकिन ये था लोगों ने बनाया हुआ तूफान। सोचिए, दुकानें लूटी गई, चीज़ें फेंकी गई, तोड़ी गई, और जो शहर इतना सुंदर लगता था वो अपनी बड़ी ही बुरी और खस्ता हालत में था। अब वहाँ के लोगों को लगा कि बस पुलिस आएगी और सारे उन लोगों को अरेस्ट करके लेके जाएगी जिन्होंने ये सारी चीज़ें तहस नहस की हैं। तो वहाँ के काउंसिल ने और पुलिस ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि चलो पहले बाकी की चीज़ें ठीक करते हैं, लोगों के पीछे अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने पूरा जो कचरा पूरी स्ट्रीट्स पे फैला था वो पहले साफ़ किया, जो ब्रोकन विंडोज़ थी उनके कांच लगाए, उसे दुरुस्त किया, उसे ठीक किया, ग्रफिटी से जो सारी चीज़ें और दीवारें स्पॉइल की गई थी उन्हें फिर से रीपेंट किया और वो शहर पहले जैसे जैसा था उसको वैसा बनाया। अब वहाँ के लोगों ने सोचना स्टार्ट किया और उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि किसी को अरेस्ट नहीं किया और ये क्या, ये इस शहर को ठीक ठाक करने में लगे हैं। तो बाद में ये हुआ कि भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, ये जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं थी उनको पहले ट्रैक पे लाया जाए, बाकी लोगों से बाद में बात करेंगे, और फिर दे डेल्ट विद द सिचुएशन। ऐसा ही कुछ हमारे साथ में होता है, बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े सपने, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको पहुँचना है उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको करना पड़ता है, डिसिप्लिन आपके लाइफ में लाना पड़ता है। तो वो डिसिप्लिन लाने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए एक माइंडसेट बनाना पड़ता है, और छोटी छोटी आदतें जो हैं, फिर चाहे आपका बेडरूम रहे, आपका स्टडी टेबल रहे, आपका लिविंग रूम रहे, आपका बाथरूम रहे, साफ सफाई ठीक ठाक तरीके से सारी चीज़ें लगाना और एक स्ट्रक्चर्ड वे में घर की चीज़ों को ले चलना, ये आवश्यक बन जाता है। अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स ये बुक पढ़ी होगी उसमें भी यही बताया गया है कि पहले इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे काम करो, अपने आप जब तुम एक डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू कर दोगे, कंसिस्टेंटली चीज़ों को करना शुरू कर दोगे, आपका फोकस बढ़ जाएगा और अपने गोल की तरफ आप पहुँचोगे। जैसे कि वहाँ के न्यूयॉर्क के काउंसिल और पुलिस ने मिलकर फिर बाद में जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, लोगों ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। आपकी ज़िंदगी में आपकी अक्नॉलेजमेंट, आपकी अप्रिसिएशन लोगों से तो बाद में आएगी, पहले आएगी आपकी तरफ से खुद के लिए। तो द ब्रोकन विंडो थियरी, करनी है छोटी छोटी चीज़ें ठीक लाइफ की और बढ़ना है आगे, सोचिए लाइफ है आपकी, आखिर डिसीजन है आपका। कैसी लगी द ब्रोकन विंडो थियरी बताइएगा।
0: लाइका गोल्ड द इवनिंग शो विद अश्विनी, यादों की बारात।

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर एंड मुकेश जी की आवाज में श्री 420 विच रिलीज इन 1958 उस फिल्म से सुनाया रमैया वस्तवैया। विंटेज गोल्ड की एक झलक आपको मिल गई। विंटेज गोल्ड लेके आते हैं वीकेंड में हमारे अपने सबके चहेते सैंडी जी। एंड आप लोगों में से कई लोग हमें लिख के भेजते हैं कि सैंडी जी की और मेरी जो नोक छोक यहाँ चलती है वो आप सबको बड़ी पसंद आती है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप बिना अपने दायरे छोड़े, बिना वो बाउंड्रीज क्रॉस किए मस्ती मजाक हो सकता है, लेकिन ऑलवेज वर्क बाउंड्रीज में होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी टू वर्क विद ऑल द लेजेंडरी प्रेजेंटर्स हियर एज कलीग्स एंड टू लर्न सो मच फ्रॉम देम। आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को ब्रोकन विंडो थियोरी पसंद आई है, एंड उसी से रिलेटेड मुझे और एक बात कहनी है कि कई लोग उनके जान पहचान में जब कोई कहता है कि भाई हमारे तो ये जो लड़का है या ये लड़की देखो ना, सिर्फ जिम में जाते रहते हैं और बस आजकल के लड़कों को क्या है, बॉडी शॉडी बनाने में लगे। आई वुड से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए कि जो लोग जिम में जाके अपनी बॉडी शॉडी भी बना रहे हैं तो वो कितने डिसिप्लिन है, अपने खाने को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और साथ में फोकस्ड रहते हैं अपनी बॉडी को लेके। जो इंसान कॉन्शियस रहता है ना, तो आप कहीं पर भी जाए ओके, अगर आप फिट हैं अपनी बॉडी में, आपकी तरफ लोगों का देखने का नज़रिया ही अलग हो जाता है। और उसमें आई हैव टू से ऑनेस्टली, रिस्पेक्ट सबसे बड़ा इमोशन होता है, क्योंकि जो इंसान अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देता है, अपने आप को फिट रखता है। एंड देखिए, बीमारियां तभी आती है जब आप मेंटली यू नो बड़े ही परेशान रहते हैं। मेंटली परेशान होना एक ही चीज़ है, लेकिन फिर फिज़िकली परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए रूट कॉज पे जाइए। कुछ लोगों को धुआं या एक पर्टिकुलर लिक्विड जो उन्हें अलग जगह में ले जाएं वो लेना पसंद होता है अपने दुखों से लड़ने के बजाय। गो टू द रूट कॉज ना, एक बार समझ लीजिए रूट कॉज क्या है। ये हवा और ये धुआं है और ये जो लिक्विड है, इसे अपना कंट्रोल किया देना है ना भाई। एंजॉय कीजिए लाइफ, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि जहाँ पे आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकें। डू यू लव माई हिंदी, बताइए जरा।
1: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, like a gold and like a radium Midlands.
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: From Christopher Nolan.
4: No one could stand between me and home, not even the gods.
3: Critics are calling The Odyssey cinema at its most epic. It's an unmissable masterpiece. Staggering, spectacular, and soul-rattling.
5: Ithaca's king is coming back.
6: Bringing vengeance.
7: Bringing it all.
3: The Odyssey, in cinemas now. Book tickets.
2: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
8: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट travelhubworld.com.
10: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
11: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
11: Plus, like our listeners, get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
11: Visit kajalskachor.co.uk.
12: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
7: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026 अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट श्रीजगन्नाथ.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।

0: वेलकम, दिस इज द सेकंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। और इस आवर का आगाज किया था आय हाय, बहुत से लोगों ने कहा तो गोली तो सीधे हमारे दिल पे आके लग गई, सोनू निगम और जसविंदर नरूला की आवाज में दूल्हे राजा से अखियों से गोली मारे, एंड कर्ज फिल्म से दर्दे दिल दर्दे जिगर मोहम्मद रफी की आवाज में सुना दिया आपको ये गीत। आई होप हमारे सैंडी जी ने भी सुना होगा, वो कहते ना मोहम्मद रफी जी का गीत सुन के उनके चेहरे पे आती है स्माइल। चलिए आप लोगों से अभी इस आवर में ओके इमोशन ऑफ द डे में फैंटास्टिक फ्राइडे में मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो हमारा स्पेशल ट्रैक होगा। लेकिन आप सबको भी मैं पूछना चाहूँगी कि आपके अपने पर्सनल पसंदीदा सिंगर कौन है, लिख के भेजिए। देखते हैं कि किसके मतलब कौन से ऐसे सिंगर है जिनके लिए मैक्सिमम वोट आते हैं अभी। ओके एंड नेक्स्ट ट्रैक जो सुनाने वाली हूँ, जैसे कि आज ना उनका बर्थडे ना एनिवर्सरी, लेकिन क्या करें, जितने भी सॉन्ग्स आज मैंने चुन के लाई हूँ क्योंकि पैर तो थिरक नहीं थे और फ्राइडे की कैलोरीज तो बर्न करनी ही थी, मुझे नौ लखा दिला दे फ्रॉम शराबी से।
1: लाइक अ गोल, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन विद योनो एसबीआई यूके ऑनलाइन एंड वाया द एसबीआई यूके ब्रांच।
0: आप पा सकते हैं एक ब्रिटिश पाउंड के बदले 128 इंडियन रुपीज एंड 90 पैसे, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: परफेक्टली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे, कॉल ऑन 02085077900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। इंडिया फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513519 क्रैनब्रुक रोड, गैंडसू, इल्फर्ड, IG2 6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
3: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
4: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
5: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. चलिए एक बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:32 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो फ्राइडे को हम मनाते हैं, फैंटास्टिक फ्राइडे, एंड इमोशन ऑफ द डे की बारी आ गई है। कल आप में से कई लोगों ने मुझे याद दिलाया कि अश्विनी थर्सडे आया और तुमने अपनी लिखी हुई कोई पोएम हमें नहीं सुनाई, तो आज सुनेंगे पोएम। क्या कहते हैं आप बताइए, इमोशन ऑफ द डे इस गीत के बाद में सुनना चाहेंगे एक पोएम? आपके जवाबों पे डिसाइड करते हैं कि सुनाए कि नहीं सुनाए। नेक्स्ट ट्रैक इज कारमा फिल्म से लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गीत सुनिए, एंजॉय कीजिए द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड दिस इज फैंटास्टिक फ्राइडे।
0: ये है लाइका गोल्ड। Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
2: Emotion of the day.

0: चलिए एक बार मिला लेते हैं घड़ियां और फिर देखते हैं कि टाइम बचा कितना, यानी कि कितनी और गीत हो सकते हैं। इट्स 38 मिनट्स पास्ट 8, आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्वनी। तो चलिए सुनाते हैं आपको एक पोयम। पोयम बेसिकली जिप्ड फॉर्म्स होता है आपके इमोशन का। तो मेरी इस पोयम का नाम है जीना सीख जाओगे। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं पोयम और शायरी भी लिखती हूँ, सो हफ्ते में से एक पोयम आपको सुनाने का मन है जिसे आप लोग सब प्रोत्साहित करते हैं। आहा, जीना सीख जाओगे। मुझसे दूर ही रहो तुम, देखो मुझसे दूर ही रहो तुम जीना सूख जाओगे। गुमसुम रोते हो जो अब खिलखिला के हंसना सीख जाओगे। मुश्किलों को सिरहाने लेके बैठे हो अब हर बात का हल ढूंढना सीख जाओगे। अरे बस दूर रहो मुझसे कुछ मेरे जैसे बन जाओगे। छोटी से छोटी चीज़ों में है खुशियाँ ये देखना सीख जाओगे। आसपास की कितनी चीज़ें उन्हें देख के महसूस कर पाओगे। अरे यार कहा ना मैंने मुझसे दूर रहो कुछ मुझसे बन जाओगे। जिंदगी खूबसूरत या बेवफा इसमें फ़र्क तो कर ही लोगे। सादगी भरी या मातम भरी इनमें से कुछ तो चुन ही लोगे। हंसो मत, हाँ हंसो मत मेरी बातों पे, तुम खुद इसमें डूब जाओगे। आंखों की मेरी भाषा को अपने नैनों से समझ जाओगे। चलो मैं चलती हूँ। अरे जाने दो यार, चलो अब चलती हूँ वरना बस मेरे ही बनना चाहोगे। सोच लो एक बार जो करीब आ गए तो क्या दूर हो पाओगे। अरे कहा ना यार मैंने मुझसे दूर रहो कुछ मुझसे बन जाओगे। कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। पॉजिटिविटी से रिलेटेड ही थी ये पोयम, कैसी लगी जरूर बताना।
1: ये है लाइका गोल्ड। नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो एपिसोड नंबर 25 इज रेडी टू वॉच एंड यू कैन लिसन इट एज वेल। लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर, कैच दिस एपिक कॉन्वर्सेशन विद टॉनी ब्रास्को, पाली ब्रह्मभट्ट, अनिका रूबी रजा, रेडियो वाली एंड अनीसा नासिर। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
4: शाम चलने लगे दिल मच
3: विद द लेजेंडरी अनूप चलोटा ऑन संडे 30th अगस्त एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ट। डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM, टिकट स्टार्ट्स फ्रॉम 40 pounds। बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk। रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस गजल्स, द प्रिंस ऑफ गजल, द यंगेस्ट गजल मेस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा,
6: नजर से
5: परफॉर्मिंग लाइव इन लंदन on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
9: sonatours.co.uk जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027, बुक बिफोर द एंड ऑफ जुलाई एंड गेट अप टू 400 ऑफ। कॉल sonatours ऑन 0208-9-51-0111.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Leica Extra podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights. This is Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 129.74 Indian rupee, 373.96 Pakistani rupee, 451.97 Sri Lankan rupee, 165.81 Bangladeshi taka, 88.75 Afghan Afghani, 173.89 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 63.43 Mauritian rupee.
3: Leica Radio.
6: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
6: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £95.88 per gram.
6: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
1: Officially London's number one Asian retro music station.

0: साहेब फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। एस जानकी एंड बप्पी लहरी की आवाज़ यार विनोद चैन कहाँ रे। 8:48 यानी कि अब हम चलेंगे, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इस आवर के आखिरी गीत की तरफ। आप लोगों को सबको पोएम बहुत पसंद आई है, तहे दिल से धन्यवाद उस चीज़ के लिए। शुक्रिया कि आप लोगों ने जो पोएम मैंने प्रेजेंट किए कुछ मुझसे बन जाओगे, है ना, तो पसंद की, थैंक यू। अगले हफ्ते और कुछ नई पोएम आपको ज़रूर सुनाएंगे। एंड नाउ दिस इज़ अ फैक्ट विच आई मीन इफ यू आर ब्लेस्ड विद दिस रिलेशनशिप इन लाइफ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ी अच्छी चीज़ है। हैविंग अ सिस्टर कैन बूस्ट योर मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ एस्टीम अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स फ्रॉम Brigham Brigham Young University। स्टोरी के बारे में कुछ कहा और लिखा गया है वहाँ पे। द सेम स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट हैविंग अ सिस्टर कैन हेल्प यू बिकम अ मोर गिविंग एंड काइंडर पर्सन। तो मेरे मम्मी पापा का दिया, मुझे एक भाई बहन, बहनें दोनों भी हैं। आपकी लाइफ में अगर ये प्यारे रिलेशनशिप्स हैं तो आई एम श्योर उनका इम्पैक्ट आप पे होगा। लास्ट ट्रैक, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। Enjoy करो, अमर अकबर एंथनी एंड दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
3: 25? Seriously?
2: Sounds like Ojo time.
3: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
2: Sorry about the wait. How can I help?
3: You can help me celebrate. I won!
4: Feel the fun! Play Ojo!
5: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gambler aware. T's and C's apply.
6: Gorgeous Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
7: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
6: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories, and stylish outfits for men and women.
7: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
6: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
7: Visit gorgeouscouture.co.uk.
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
10: Location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
14: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर। This is the Leica Radio Network.

0: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: For £1 in British sterling, आपको मिल सकता है 128 इंडियन रुपी एंड 90 पैसे. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: Aiyah, ji, this is the third hour of this musical journey. The evening show with Ashwini. आप सुन रहे हैं on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. तो भाई आज 17th of July, Friday, किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, किसी के लिए बड़ा यादगार दिन होगा क्योंकि अच्छे से बीता, किसी के लिए बड़ा दुखदायी दिन हो सकता है, लेकिन ये दिन मनाया जाता है और भी दूसरी चीज़ों के लिए. तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड इमोजी डे एंड नेशनल टैटू डे, नेशनल लॉटरी डे, नेशनल येल्लो पिग डे, नेशनल पीच आइसक्रीम डे, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल फिग्रन डे एंड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस. अब ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती भी होंगी तो भी न जाने हम इसकी तरफ कितना ध्यान देते होंगे, पर हाँ, इमोजी हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है क्योंकि हमें जब भी अपने आप को किसी को एक्सप्रेस करना होता है तो बस इमोजी भेज दो. वो इमोजी देख के इंसान समझना है कि अच्छे मूड में है कि ओए होए मामला पूरा गड़बड़ है. एंड टैटू, यस, टैटूज पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लोग अब टैटू बनाने लगे हैं. तो भाई क्या आपने भी टैटू बनवा रखा है? वर्ल्ड इमोजी डे है तो क्या आप भी इमोजी इमोजी खेलते हैं या सचमुच कभी मैसेजेस लिखते हैं? जैसे हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो सिर्फ इमोजी में हाई हेलो करते हैं, बाय बाय करते हैं.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: लाइका रेडियो.
0: फुटबॉल स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, स्पेशलिस्ट्स ऑफ फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉ, प्रॉपर्टी, सिविल डिस्प्यूट्स, विल्स एंड प्रोबेट्स एंड फॉर अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स.

0: देखिए आज तो कोई मैच है नहीं, सैटरडे 18th ऑफ जुलाई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मैच होने वाला है, संडे 19th जुलाई स्पेन और अर्जेंटीना के बीच मैच होने वाला है।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Laga gori gujariya se

क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ फैंटास्टिक एनर्जेटिक ट्रैक। मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से आई भाई, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने हमने ये सुना गीत। दिलीप कुमार की एनर्जी, इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई लव दिस ट्रैक। गंगा जमुना से सुनाया आप सभी को ये गीत। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा, आप लोगों ने सभी ने कहा है कि आज जो गोविंदा के गीत मैंने आपको सुनाया, आप सबको मज़ा आ गया। चलिए जी, और गोविंदा जी के गाने आपको सुनाते रहेंगे। मिला लेंगे एक बार घड़ियाँ, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। सो इट्स 9:23, आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अच्छा जी, तो लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग द एनुअल रथ यात्रा दिस संडे 19 जुलाई, स्टार्टिंग फ्रॉम SKSST कैंटन हैरो टेम्पल एंड एंडिंग एट श्री स्वामीनारायण टेम्पल इन स्टैनमो। डिवोटीज विल हैव द चांस ऑफ पुलिंग लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैरो एंड ब्रेंड। एंड वहाँ से आपको लाइव अपडेट्स देने वाले हैं रवि शर्मा जी, सरिता सबरवाल जी, और साथ में मैं भी इनके साथ

0: भाई 80s में जितनी भी शादियां हुई ना, आई थिंक उसमें ये गीत तो वो बैंड वाले बजाते ही बजाते थे। याद आ गई आपको अपनी अपनी शादियां जब ये गीत प्ले होता था? मोहम्मद रफी और देवेन वर्मा की आवाज में ये गीत हमने लिया आदमी सड़क का, एंड इसमें संगीत दिया था म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी ने। नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रहे हैं आपको ये है लता मंगेशकर एंड भूपेंद्र सिंह की आवाज में जुएल थीव से। अच्छा जी, बता दें आपको गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा। लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। तो देखिए हमारे लाइका मीडिया की तरफ से कितने सारे ऑप्शन हैं आपके लिए सुनने के लिए, पर फिलहाल चलते हैं होठों में ऐसी बात। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है Like a Gold.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
4: The Evening Show with Ashwini.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट travelhubworld.com.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio Partner, Leica Radio Network. Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit kajalscouture.co.uk.
9: She can't hear you, but danger always hears her coming.
10: Sab dar bhag jaye.
9: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Kher, Chunky Pandey and Seema Pavar. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
11: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. Sponsored by this Mobile is Leica Gold. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
12: For £1, you'll get 129.85 Indian rupee, 373.91 Pakistani rupee, 451.95 Sri Lankan rupee, 165.8 Bangladeshi taka, 88.76 Afghani, 173.88 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 63.43 Mauritian rupee.
13: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
12: Gold is currently trading at £95.94 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
12: तो चलिए एक बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 41 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है Leica Gold Radio इन लंदन एंड Leica Radio इन ग्रेटर मैनचेस्टर. और आप और हम पूरा सप्ताह जो है बड़े उत्साह से, हमने ये पूरा का पूरा वीक निकाला.
11: फ्राइडे तक पहुंचते हैं तो हम सभी जो हैं काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं। रीज़न, क्योंकि पूरा सप्ताह ना जाने कितने अप्स एंड डाउन्स, ना जाने कितने गोल्स को अचीव करने वाली मेहनत, सब कुछ कहीं ना कहीं हम सबको ड्रेन कर देती है। लेकिन शाम 7 से 10 आपके मनोरंजन की पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है मुझ पर, मंडे से फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक। ओवर द वीकेंड यस, सैटरडे तो बिजी हैं हम सब अपने अपने कामों में, एंड संडे हम लोग ज़रूर मिलने वाले हैं अपने रथ यात्रा में। तो वहाँ पे रवि शर्मा जी होंगे, सरिता सबरवाल जी होंगी, मैं भी होंगी। अगर आप रथ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर आपसे मिलना होगा। एंड कल सुबह आएंगे हमारे अपने दीप अपने मस्ती भरे अंदाज में, तो उनका साथ दीजिएगा। वीकेंड मौसम अच्छा है, सुहाना है, जो हम लोग पिछले कुछ हफ्ते निकालते आए ना इतने दिनों में, हाय गर्मी, उफ गर्मी हो रही थी हम सबके लिए, लेकिन ऊपर वाला अब हम पे है धीरे धीरे मेहरबान। तो टेम्परेचर्स अभी 20s में है, तो ये वी आर हैप्पी सोल्स ना अभी सब। ओके, तो सारे हैप्पी सोल्स के लिए जो मैं आज सुनाने वाली हूँ गज़ल या कव्वाली, मैं क्या सुनाने वाली, जी मैं सुनाने वाली हूँ कव्वाली द बर्निंग ट्रेन की, पल दो पल का साथ हमारा। पल दो पल तो नहीं है, झूठ बात, वीकडेज में है 7 से 10, है ना। लेकिन उसके पहले एक मस्ती भरा गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में मिल गया हमको, साथ ही मिल गया, हम किसी से कम नहीं इस फिल्म से सुना रही हूँ ये मस्ती भरा गीत आप सबको। आप हमें मिल गए, हम आपको मिल गए, और हम साथ मिलके एंजॉय करते हैं ये म्यूज़िकल जर्नी। हमेशा की तरह इतना ही कहूँगी, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, तो प्यार दो, प्यार लो। पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी पावर का यूज़ नहीं करता होगा, क्योंकि म्यूज़िकल फैमिली से डिपेंड कर आप आते हैं यहाँ से, एंड आपका मूड जो डिपेंडेंट होता है वो म्यूज़िक पे होता है, उसकी ज़िम्मेदारी हम प्रेजेंटर्स पे होती हैं। लाइफ बहुत सुंदर है, प्लीज़ उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें, कम्युनिकेट करें, एंड साथ में म्यूज़िक सुनते रहें। जैसे कि पहले आपको बताया हमारे बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं, जब जी चाहे जो जी चाहे बिल्कुल सारे के सारे हमारे चैनल्स सुनिए, एंड पूरे सप्ताह हमारे सारे प्रेजेंटर्स जो हैं वीकडेज वाले सारे खूब मेहनत करके लिए आपके लिए मनोरंजनात्मक कार्यक्रम लाते हैं। वीकेंड क्रू के लिए रहिए तैयार, अपने आप का खूब ख्याल रखिए। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
2: Laika Gold.
10: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: ये है
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 our line.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
7: का गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदाबहार गीत

0: Gold Knights on Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आप

0: के लिए परफेक्ट पैकेज, रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक न घूमे, आपके अपने लाइका गोल्ड पर